जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुत

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरिया नू तू हमेशा याद रखी, नी मेरे बेले आबाद ना होवन तू अपने बेले आबाद रखी। जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होवन तो पहला मैनू दे के थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू कर

दिन रात मेहनत कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे, फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

अड़या लोक मारी दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

0: जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद पिछे मुड़दी ना, तन मेरे ते फटियां लीरां डंग दी रोटी जुड़दी ना। त्रे लगी ता हंजू पीते, लगी भुख ता गम ही खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जेठपुरी मैनू तेरे उत्ते हुण ना कोई रोस दिसे, मेरा इश्क तां सच्चा सजना तेरे विच कोई खोट दिसे। मेरा इश्क तां सच्चा सजना तेरे विच कोई खोट दिसे। असी इश्क तेरे नाल करके तेरी थां ते रब नूं पावे ठे। तू की दर्द नूं जाने असी बहुता दर्द हंडावे ठे। जेठपुरी मैनू तेरे उत्ते हुण ना कोई रोस दिसे, मेरा इश्क तां सच्चा सजना तेरे विच कोई खोट दिसे। असी इश्क तेरे नाल करके तेरी थां ते रब नूं पा बैठे। तू की दर्द नूं जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: जेठपुरी जी तो बाद हुण मैं सदा देन जा रहा हाँ डॉक्टर इंदरपाल कौर जी। इंदरपाल कौर जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो रजिस्ट्रार वजों रिटायर हो चुके ने ते अज ओ साडे श्रोतियां लई अपनी कविता चाहत लैके हाजिर ने। डॉक्टर इंदरपाल कौर जी तुहाडा स्वागत है।
2: सारे श्रोतियां नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं श्री हरबंस ह्यों

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

E vi per agna jagna, e vi per agna jagna, ma pian, tere viran lardelagna. E vi per agna jagna, ma pian, tere viran lardelagna. Tere vi ma pian ti e jagdi, tere ami ma pian ti e jag, tiri teni bhai. जा सोरे कर दिए ले जा लड्डा परी विदाई, जा सोरे कर दिए ले जा लड्डा परी विदाई।

ताई। भैन ने आनी बकरी पारोवे, भैन ने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं वराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सौरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई। जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई।

हो गई मिट्टी मेरी माँ। जो मिट्टी नाल पांडा बनदा तू मिट्टी दा पूरा, कदे मान